अभी आपने समूह स्वर में ये देशभक्ति पर गीत सुना, जिसके रचयिता थे सुमित्रानंदन पंत। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं प्रहलाद शिंदे के स्वर में दत्ता पाटिल की ये रचना।

दत्ता पाटिल की ये रचना अभी आपने सुनी प्रहलाद शिंदे के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत भानुदास की ये भक्ति रचना मनोहर सबनीस और सहकारियों के स्वर में।

मनोहर सबनीस और सहकारियों के स्वर में संत भानुदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं अनुराधा मराठे के स्वर में रमन रंडीवे की ये भक्ति रचना।

रमन रणदिवे की भक्ति रचना अभी आपने सुनी अनुराधा मराठे के स्वर में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी पुणे का निर्माण था, जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत, हर समय हर पल।

0: आप सुन रहे हैं है पंडित बुधादित्य मुखर्जी का सितार वादन। आपके साथ तबले पर श्री सोहन लाल मिश्रा साथ दे रहे थे। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग मारो।
1: यू आर लिस्निंग टू सितार रिसाइटल बाय पंडित बुधादित्य मुखर्जी। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री सोहन लाल मिश्रा। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट नाउ लिसन टू राग मारू।

0: अब तक आप सुन रहे थे पंडित बुधादित्य मुखर्जी का हिंदुस्तानी सितार वादन। आपके साथ तबले पर श्री मुकुंद भाले साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ द्वारा पेश किया गया।
1: यू आर लिसनिंग टू सितार रिसाइटल बाय पंडित बुधादित्य मुखर्जी। He was accompanied on tabla by Shri Mukund Bhale. This program was contributed by Akashvani Dharwad Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग गुर्जरी तोड़ी में बांसुरी वादन. आज के कलाकार हैं सुदीप कुमार चट्टोपाध्याय. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार. तो लीजिए प्रस्तुत है राग गुर्जरी तोड़ी में बांसुरी वादन, कलाकार सुदीप कुमार चट्टोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल्स. लिसन टू अ फ्लूट रिसाइटल इन द राग गुर्जरी तोड़ी. Our artist is Sudeep Kumar Chattopadhyay. Accompanying him on the tabla is Debashish Sarkar. Listen to Rag Gurjari Todi on the flute. Our artist is Sudeep Kumar Chattopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग गुर्जरी तोड़ी में बांसुरी वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे सुदीप कुमार चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग भाटियार में गिटार वादन। कलाकार हैं पंडित देवाशीष भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं परिमल चक्रवर्ती। तो आइए सुनते हैं राग भाटियार में गिटार वादन, कलाकार पंडित देवाशीष भट्टाचार्य।
1: यू वर लिसनिंग टू अ फ्लूट रिसाइटल इन द राग गुर्जारी टोडी। आवर आर्टिस्ट वॉज सुदीप कुमार चट्टोपाध्याय। Accompanying him on the tabla was Debashish Sarkar. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a guitar recital. Listen to the rag Bhatiyar on the guitar. Our artist is Pandit Debashish Bhattacharya. Accompanying him on the tabla is Porimal Chakraborty. Listen to the rag Bhatiyar on the guitar. Our artist is Pandit Debashish Bhattacharya.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भाटियार में गिटार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित देवाशीष भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे परिमल चक्रवर्ती। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है अलका देव मारूलकर का गायन, राग है कोमल ऋषभ आसावरी। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं प्रीत न कीजिए। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है और उसके बोल हैं ना मोहे आस। इन द प्रोग्राम ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट अ वोकल क्लासिकल रिसाइटल बाय अलका देव मारूलकर। राग इज कोमल ऋषभ आसावरी। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू एक ताल प्रीत न कीजिए एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल ना मोहे आस।

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था अलका देव मारुलकर का गाया राग कोमल ऋषभ आसावरी। आपके साथ तबले पर संगत की जमाल खान ने और सारंगी पर उस्ताद सुल्तान खान ने। और अब हम आपको सुनवाते हैं अलका देव मारुलकर का गाया राग ललिता गौरी। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं प्रीतम सैया। द्रुत रचना भी तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं ध्रुव मंडल प्रसाद।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वाज राग कोमल ऋषभ आसावरी, कंटिन्यूइंग द क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय अलका देव मारुलकर। वी नाउ प्रेजेंट राग ललिता गौरी। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल प्रीतम सैया, एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो सेट टू तीन ताल ध्रुव मंडल प्रसाद। शी इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय जमाल खान एंड ऑन द सारंगी बाय उस्ताद सुल्तान खान।

0: ये था अलका देव मारूलकर का गाया राग ललिता गौरी। आपके साथ तबली पर संगत की जमाल खान ने और सारंगी पर उस्ताद सुल्तान खान ने। इसके साथ ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अलका देव मारूलकर का गायन अब संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: दैट वॉज राग ललिता गौरी। विद दैट वी कंक्लूड द क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय अलका देव मारूलकर। She was accompanied on the tabla by Jamal Khan and on the sarangi by Ustad Sultan Khan. This program was a presentation of All India Radio, Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग मारू बिहाग। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं रसिया हूँ, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं तरपत रैन दिन।
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now present for you a vocal recital by Pandit Bhimsen Joshi. He first presents rag Maru Bihag, in which you will hear the Bada Khayal set to Vilambit Ektal, followed by the Chota Khayal set to Drut Teen Tal.

0: अभी आप पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग मारू बिहाग सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए ठुमरी, बोल हैं जादू भरे नाम।
1: यू जस्ट हर्ड राग मारू बिहाग, कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल पंडित भीमसेन जोशी। नाउ प्रेजेंट्स अ ठुमरी

0: अभी आप पंडित भीमसेन जोशी की गाई ठुमरी सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए अभंग, बोल हैं देव विट्ठल।
1: यू जस्ट हर्ड अ ठुमरी कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल। पंडित भीमसेन जोशी नेक्स्ट प्रेजेंट्स अभंग।

0: अभी आप सुन रहे थे अभंग। कार्यक्रम के आखिर में पंडित भीमसेन जोशी की आवाज में ये भजन प्रस्तुत है, बोल है जो भजे हरि को सदा।
1: यू जस्ट हर्ड अभंग बाय पंडित भीमसेन जोशी। ही नाउ कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद अ भजन।

0: अभी आप पंडित भीमसेन जोशी का गायन सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: With that bhajan, we come to the end of the vocal recital by Pandit Bhimsen Joshi. This program was a presentation of All India Radio Delhi.

मारे बमा रा बबगा रे सा दे सा बबगा रे सा दे बबगा रे सा आत्मा सारी के बबगा गा रे सारी घर रे सा नर बबगा रे सा दे बबगा रे सा

ಬಿದಂ ಚಕ್ರದ

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पुष्पराज गोष्ठी का सितार और सुरबहार वादन. लीजिए सुनिए सितार पर राग सरस्वती. आलाप जोड़ झाला के पश्चात विलंबित गत तीन ताल में निबद्ध है. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग सितार एंड सुरबहार रिसाइटल बाय पंडित पुष्पराज गोष्ठी. लिसन राग सरस्वती ऑन सितार, आलाप जोड़ झाला फॉलोड बाय विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल.

ये था सितार पर राग सरस्वती। तबले पर संगत कर रहे थे भूषण परचुरे। कार्यक्रम को जारी रखते हुए पुष्पराज कोष्टी अब सुरबहार पर प्रस्तुत कर रहे हैं राग खमाज। लीजिए सुनिए आलाप जोड़ झाला, गत चौताल में निबद्ध है। दैट वॉज राग सरस्वती ऑन सितार अकंपनीड ऑन तबला भूषण परचुरे। इन कंटिन्यूशन ऑफ प्रोग्राम पंडित पुष्पराज कोष्टी प्रेजेंट्स राग खमाज ऑन सुरबहार। आलाप जोड़ झाला फॉलोड बाय गत सेट टू चौताल।

0: आप सुन रहे थे सुरबहार पर राग खमाज। पखावज पर संगत कर रहे थे विवेकानंद कुरांगले। इसी के साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पुष्पराज गोष्ठी का सितार और सुरबहार वादन संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: यू आर लिसनिंग खमाज ऑन सुरबहार। Accompanying him on Pakhavaj, Vivekanand Kurangale. With that, we conclude Sitar and Surbahar recital by Pandit Pushparaj Koshti. This was the contribution of AIR Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel, Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग बागेश्वरी पर सितार वादन सुनवाएंगे. कलाकार हैं सब्यसाची सारखिल. इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present Hindustani instrumental recitals. Listen first to a sitar recital in the rag Bageshri. Our artist this evening is Sabyasachi Sarkhel. Accompanying our artist on the tabla is Debashish Sarkar. Listen now to the sitar in the rag Bageshri. Our artist, Sabyasachi Sarkhel.

0: अभी आप सब्यसाची सारखेल का सितार वादन राग बागेश्री पर सुन रहे थे। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सितार पर सब्यसाची सारखेल का राग झिंझुटी। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन द राग बागेश्री। आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग इज सब्यसाची सारखेल। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। Continuing the concert, our artist Sabyasachi Sarkhel now presents the rag Chinchoti on the sitar. Accompanying our artist on the tabla is Debashish Sarkar. Listen now to the sitar in the rag Chinchoti, our artist Sabyasachi Sarkhel.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग झिंझुटी पर सब्यसाची सारखेल का सितार वादन सुन रहे थे। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार। ये हमारे आकाशवाणी कोलकाता की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Chinchoti. Our artist was Sabyasachi Sarkhel. Accompanying our artist on the tabla was Debashish Sarkar. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है ऋषिकेश गांगुटे का गाया राग नट भैरव. विलंबित बंदिश तीन ताल में निबद्ध है. बोल है करम करो तुम मो पे साई. और द्रुत बंदिश तीन ताल पे निबद्ध है जिसके बोल है रब साच तेरा जन्म आधार. सारंगी पर आपके साथ संगत कर रहे हैं उस्ताद नसीर खान और तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र. तो आइए सुनते हैं राग नट भैरव ऋषिकेश गांगुटे की आवाज में. इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुटे. ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग नट भैरव. बोथ द कॉम्पोजिशंस विलंबित एंड द्रुत आर सेट तीन ताल. अकॉम्पनिंग हिम ऑन सारंगी उस्ताद नसीर हुसैन खां एंड ऑन तबला शीतल प्रसाद मिश्र.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरद भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे ऋषिकेश गांगुर्डे का गा राग नट भैरव। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का गाया राग शुद्ध कल्याण। विलंबित और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ सारंगी पे संगत कर रहे हैं उस्ताद नसीर खां और तबले पर संगति दे रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। You are listening Raag Nat Bhairav by Rishikesh Gangude. Now, he is presenting Raag Shuddha Kalyan. Vilambit and Drut set in Tintal. Accompanying him on Sarangi, Ustad Nasir Kha and on Tabla, Sheetal Prasad Mishra.

अभी आप सुन रहे थे ऋषिकेश गांगुर्डे का गाया राग शुद्ध कल्याण। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। नाउ यू आर लिसनिंग ऋषिकेश गांगुर्डे ऑन राग शुद्ध कल्याण। दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस प्रोग्राम वॉज कंड्यूटेड बाई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन. कलाकार हैं विदुषी जरीन शर्मा. राग है बसंत मुखारी. आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप जोड़ झाला तत्पश्चात दो गतें. विलंबित गत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में. संगत कलाकार हैं तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा. द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग बसंत मुखारी. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला.

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार है विदुषी जरीन शर्मा। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे विदुषी जरीन शर्मा से राग जोग में आलाप जोड़ और छाला, तत्पश्चात विलंबित और द्रुत गत। विलंबित गत झपताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा, यू विल लिसन द राग जोग।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थी विदुषी जरीन शर्मा। संगत कलाकार थे तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है विकास बाबू और साथियों का शहनाई वादन। पहले पेश है मालकौंस में आलाप, विलंबित गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a Shehnai recital by Vikas Babu and Company. Alap is in Rag Malkons. The Vilambit Gat is set to Ek Tal and Drut Gat is set to Teen Tal.

0: अभी आप विकास बाबू और साथियों का शहनाई पर बजाया राग मालकों सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग मारू भाग, आलाप और द्रुतगत एक ताल में निबद्ध है।
1: You were listening to a Shehnai recital in Raag Malkons by Vikas Babu and Company. Now listen to a Raag Maru Bihag.

0: अभी आप विकास बाबू और साथियों का शहनाई पर बजा राग मारू बिहाग सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए ये धुन।
1: यू वर लिसनिंग टू अ शहनाई रिसाइटल इन राग मारू बिहाग। नाउ लिसन टू अ धुन।

0: अभी आप विकास बाबू और साथियों का शहनाई वादन सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: You were listening to a Chennai recital by Vikas Babu and Company. This program is the presentation of All India Radio, Delhi.

Sabaniza, Baniza. Sabaniza. Niza, Baniza. Sabaniza.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classic Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं एक मराठी पारंपरिक भक्ति रचना से। स्वर है शाहिर मनोहर विठ्ठल वलंजू और सहकारी।

शाहिर मनोहर विट्ठल वलंजू और सहकारियों के स्वर में यह पारंपरिक रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं पूर्णिमा पटवर्धन से संत तुकाराम महाराज की मराठी भक्ति रचना।

पूर्णिमा पटवर्धन के स्वर में संत तुकाराम महाराज की मराठी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की ये रचना, सीताराम कहो राधे श्याम कहो।

घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं राधिका सूद नायक के समय संत ब्रह्मानंद की।

राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की रचना अभी आपने सुनी। संत कबीरदास की एक रचना प्रस्तुत है, स्वर है विजय सिंह का।

विजय सिंह के स्वर में संत कबीरदास की रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं एक सिंधी भक्ति रचना। स्वर है जय श्री बत्थीजा।

जय श्री बथीजा के स्वर में ये पारंपरिक सिंधी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं ओंकार प्रभुघाटे से ये मराठी भक्ति रचना।

ओंकार प्रभु घाटे के स्वर में संत अमृतराय की ये मराठी भक्ति रचना आप सुनी। कार्यक्रम में अब एक गुजराती रचना प्रस्तुत है, स्वर हसमुख मंडालिया का।